0: ଚାରିଧାମକୁ ସମ୍ବରେଶ୍ୱର ଆସ ବିଦେଶ ବାଟ ଆଣ ଯାଇଛନ୍
1: अब मनी विदेश जान्छु भने के हो के त
0: हजुर
1: दुई सय पैसा कमाउनलाई।

नागिन नागिन कितने शॉट्स पिए नागिन फिर कभी बाएं फिर कभी दाएं नाचे तू जैसे नागिन कहीं तेरा फोन है कहीं तेरे शूज है थोड़ी गुस्सा थोड़ी कंफ्यूज है लगती है प्यारी पर उड़े तेरे फ्यूज दिल कर ब्रेक तू ब्रेकिंग न्यूज है तेरे प्रिटी फेस पे फंस गया गलती हुई मैं तुझे देख के हंस गया मेरे सिचुएशन पे ना लाफ करो मुझसे दूर रहो मुझे माफ करो।

0: watch my biggest blockbusters online anytime, anywhere on erosnow.com.
1: सलमान खान की कॉमेडी, रोमांस और एक्शन मूवीज एंजॉय कीजिए। अपने फोन या आईपैड से इसी वक्त साइन अप कीजिए और फ्री में देखिए सिर्फ इरोस नाउ पर।